क्या गुणे आंख बखाण। जो सेवै तुध जी, जन नानक तन कुरबाना। हर त्यावै तुध जी, से जन जुग मैं सुख वासी। से मुकत पए, जिन हर त्याया जी, तिन तूटी जमकी फासी। जिन निरभउ जिन हर निरभउ त्याया जी, तिनका भउ सब गवासी। जिन सेवया मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी। से तन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी, परे बेअंत बेअंता। तेरे भगत सलाहन तुद जी, हर अनेक अनेक अनंता।

समर्थ शास्त्र जी कर क्रिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो पावे मेरे हर भगवंता तू आद पुरख या परंपर करता जी तुद जे वड़े अवर न कोई तू जोग जोगे कोस दास दा तू एको जी तू ने चल करता सोई तुदे आपे भावे सोई वरते जी तू आपे करें सोई तुदे आपे सृष्ट सब उपाई जी तुदे आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावे करते के जी जो सबसे का जान होई आसा महला चौथा तू करता सचियार मैं डासाई जो तो पावे सोई थीसी जो तू दे सोई हूं पाई रहाओ सब तेरी तू सबनी त्याया जिसनु कृपा करें तन नाम रतन पाया गुरमुख लाधा मनमुख गवाया तुझे आप विछोड़िया मिलाया तू दरियाओ सब तो जही माँ है तुझ बिन दूजा कोई ना है जी जंत सब तेरा खेल विजोग मिल विछुड़िया संजोगी मेल जिसनो तू जाना है सोई जन जाने हर गुण सद ही आख बखाण जिन हर सेवया तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद बिन दूजा वर न कोए तू कर कर वेखें जाने सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होए आसा महला पहला तित सरवरड़ पहिले निवासा पानी पावक तने किया पंकज मोह पग नी चाले हम देखा तें डूबियले

ख्वार हुए सब मिलेंगे, बचे शरण जो बोले सो निहाल। सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

अंतर जामी पुरख भगवान, दासन दास कहे जन नानक, जेहा तू कराए तेहा हाँ करी बखान। सतनाम वाहिगुरु साहिब जियो, राग तनासरी बाणी

सनक सनंद महिष समाना, शिख नाग तिरु मर्म न जाना। सनक सनंद महिष समाना, शिख नाग

मन मुख कर्म करे अजाई, ज्यों बालू कर ठौर न ठाई। जिसनो पै गोबिंद दयाला, गुर का बचन तिन बांध उपाला। कोट मध्य कोई संत दिखाया, नानक तिन कै संग तराया। जे होवे भाग तन दर्शन पाइये, आप तरे सब कुटंब तराइये। रहा हो दूजा प्रभाती महला पंजवां, सिमरत नाम किलबिक सब काटे। धर्म राय के कागर फाटे, साध संगत मिल हर रस पाया। पार ब्रह्म रिदमाय समाया, राम रमत हर हर सुख पाया। तेरे दास चरण शरण आया, रहाओ चूका गौण मिटिया अंधियार। गुर दिख लाया मुकत द्वार, हर प्रेम भगत मन तन सद राता। प्रभु जिन आया तब ही जाता।

नेत्रमा महातरंग ते कांड लागा, जन्म जन्म का टूटा गांडा, जप तप संजम नाम संभालिया, अपने ठाकुर नजर निहालिया। मंगल सुख कल्याण तिथाई, जसेवक गोपाल गोसाई, प्रभ सो प्रसन्न पै गोपाल, जन्म जन्म के मिटे बेताल। होम जग उर्ध तप पूजा, कोट तीर्थ इशनान करीजा। चरण कमल नमक हृदय तारे, गोबिंद जपत सब कार्य सारे। ऊचे ते ऊचा प्रवथान, हर जन लावे सहज ध्यान। दास दास तन की बांछो तूर, सर्व कला प्रीतम भरपूर।

प्रभाती सुन संध्या तेरी देव देवा कर अद्भुत आदि समाई सिद्ध समाध अंत नहीं पाया लाग रहे शरणाई लेहो आरती हो पुरख निरंजन

हृदय सूरी सिदानन सिदानी पर दर्भ हिरन की वाणी सिल पूज सचकर गणेशन निस जाग सांत भगत परवेशन नग नाच पग नाचन चित अकर्मन ले लपट नाच अधर्मन मिर्ग आसन तुलसी माला कर उजल तिलक कपाला हृदय कूड़ कंठ रुगधारन रे लंडन कृष्ण अपा

0: सुपने स्यों जग पसार सिमरत ने।
1: माया चाकी चेरी चेचा बंती माला न बीत जहे जन्मे काज रे निस दिन सुन के पुराण समझत न रे अजान। काल तो पहुंचो आन कहा जह भाज रे रहाओ अस्थिर जो मान्यो दे सो तो तेरो होए है खे। क्यों ना हर को नाम ले मूर्ख ने लाज रे राम भगत ही ये आन छाड़ दे तै मन को मान। नानक जाने बखान जग में बिराज रे एक ओंकार सतनाम करता पुरख।

योग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ता ब्राह्मणा खत्री शब्दं सूर शब्दं शूद्र शब्दं प्राकृता सर्व शब्दं ता एक शब्दं जे को जान सपे ओ नानक ता को दास है सोई निरंजन देओ। एक कृष्णं ता सर्वदेवा देव देवा ताय आत्मा आत्मं श्री वासुदेवस् जे कोई जान सपेव नानक ता को दास है सोई निरंजन देव।

कथंच माता कथंच पिता कथंच बनिता विनोद सुता कथंच भ्रात मीत हित बंधव कथंच मोह कुटुंबिते कथंच चपल मोहनी रूपं पेकंते त्यागं क्रोत रहंत संग भगवान सिमरन नानक लब्धिअंग चोतन त्रिगंत मात पिता स्नेहं त्रिग स्नेहं प्रात बांधव त्रिग स्नेहं बनता बिला सुत त्रिग स्नेहं गृहार्थ कह साध सांग स्नेह सत्यं सुखियं बसंत नानक मिथ्यंत देहं खीणंत बलनं बर्धंत जरुआ हित्यंत माया अत्यंत आसा अथित पवनं गनंत सुवासा पयान तरमं पतंत मो कूप दुर्लभ देहं तत आश्रय नानक गोबिंद गोबिंद गोबिंद गोपाल कृपा काच कोटं रचंत तोयं लेपनं रकत चरमण नमंगत द्वारं पीत रहतं बाए रूपं स्तंभन गोबिंद नामंग न सिमरंत वग्यानी जानंत अस्थिरं दुर्लभ दे उदरंत साध शरण नानक हर हर हर हर हर हरे जपंत सुभांत तुयं अचोत गुणज्ञं पूर्णं बोलो कृपाला गंभीरं उच्च सर्वज्ञ अपारा प्रत्या प्रियं विश्राम चरणं अनाथ नाते नानक शरणं मृगी पेखंत बदक प्रहारेण लख आवद अहो जस रखेण गोपाल नानक रोम नाश देते बहुजतन करता बलवंत कारी सेवंत सूरा चतुर दिशा बिकम थान बसंती उच्च है न समरंत मरण कदाच होवंत आज्ञा भगवान पुरखा नानक कीटी सास्य करखते शब्दं रतं हितं मया कीर्तं कली करम कृत्वा मिटं तत्रागत परम मोहं भगवान रमणं सर्वत्र थान्यं दृष्ट त्वं अमोग दर्शनं बसंत साधर सना हर हर हर हरे नानक प्रियं जाप जपना कटंत रूपं कटंत दीपं कटंत रव सस्यर नखेतर गगनं कटंत वसुधा गृतर शिखंडं कटंत ललना सुतप्रात हीतं कटंत कनक मानक माया स्वरूपं न कटंत केवल गोपाल अच्युत वस्त्रं नानक साध जान न बिलंब धर्मं बिलंब पापं दृढ़ंत नामं तजंत लोभं शरण संतं किल बिखनासं प्राप्त्यं धर्म लखियण नानक जेसो प्रसन्न माधव मृत मोहं अलप बुद्धियं रचंत बनता विनोद साहं जौबन बह कर्म कनक कुंडलह बचित्र मंदिर शोभंत बस्तरा इत्यंत माया व्यापतं हे अच्युत शरण संत नानक पो भगवान नम जनमंग तमरणं हरखं तोगं भोगं तोगं ऊचं तीचं नाना सुमूचं राजंग तमानं अभिमानं ताहीनं प्रवृत मार्गं वर्तंत विनाशनं गोबिंद भजन साध संगेण अस्थिरं नानक भगवंत भजनासनं कृपांत हरियं मतत ज्ञानं बिगसीद बुद्धा कुशलतानं बस्यंत रिखियं त्याग मानं शीतलंत हृदयं दृढ़ संत ज्ञानं

नानक सर्व जी प्रतपालक है, अनित्य वितंग अनित्य चितंग अनित्य आसा बहुविध प्रकारंग अनित्य हेतंग अहंग बंधंग परम माया मरणंग विकारंग फिरंत जोन अनेक जठरागन ना समरंत मलिन बुद्धियंग। हे गोबिंद कर्तमया नानक पतित उदाहरण साध संगम है, ग्रंथ गिर पतित पातालं जलंत ते दीप बेसांतर बहंत अगाह तो यंग तरंगं दुखंत ग्रह चिंता जन्मक तामरण है।

घोर दुखियं अनकातयं जन्म दारिद्र्यं महाविख्यातं मिटंत सकल सिमरंत हर नाम नानक जैसे पाव काष्ट पस्मं करोत। अंधकार सिमरत प्रकाशं गुण रमंत अखंडन रिद बसंत पै पीठ दूत कर्म करत महानिर्मल। जन्म मरण रहंत सरोता सुख समूह अमोघ दर्शन शरण जोगं संत प्रे नानक सो भगवान खेमं करोत। पाशं करोत ग्रीण मैं निरासं आस पूर्ण निर्तन भयंग तनवंत रोगियं रोग खंडन। भगत्यं भगत दानं राम नाम गुण कीर्तन पार ब्रह्म पुरुष दाता रह नानक गुर सेवा किंग लभे ते। अतरंग तरंग तारण निर्तनं तरनाम नरहर अनाथ नाथ गोविंद बालहीन बलकेशव। सर्व भूत दयाल अचुत दीन बांधव दामोदर सर्वज्ञ पूर्ण पुरख भगवान भगत वशल करुणामय। घट घट बसंत वासुदेव पार ब्रह्म परमेश्वर जाचंत नानक कृपाल प्रसादं नह बिसरंत नह बिसरंत नारायण। न समर्थं न सेवकं न प्रीत परम पुरुषोत्तमं तव प्रसाद स्मृते नामं नानक कृपाल हर हर गुरं। परण पोखण करंत जिया विश्राम साधन देवंत दानं सृजंत रतन जन्म चतुर चेतन वृतंत सुख आनंद प्रसाद सिमरंत नानक हर हर हरे।

रमणं केवलं कीर्तनं सधर्मं देह तारणा अमृत नाम नारायण नानक पीवतं संतना त्रिप्यते। सहनशील संतं सम मित्र सदुर्जन नानक भोजन अनेक प्रकारेण निंदक आवद होय उपतिष्ठते।

गोबिंद नाम जपंत मिल साध संगय, नानक से प्राणी सुख बसनै, सैना साध समूह सूर अजतं सन्ना हंग तन निम्रता। आवद गुण गोबिंद रमण, ओट गुर शब्द कर चरमण, आरूढ़ते अश्वरथ नागय, बुझंते ब्रह्मार गय, बिचरते नृपयं शत्र सेना, तायंते गोपाल कीर्तन। जितते विश्व संसार, नानक वस्यं क्रोत पंच तस्कर, मृग तृष्णा गंधर्व नगरं, द्रुम छाया रच दुर्मत। ततः कुटाम्ब मोह मिथया, स्मरंत नानक राम राम नामे, नच विद्या।

निधान निगमंग नच गुणग नाम कीर्तन नच राग रतन कंठंग नह चंचल चतुर चातुरा भाग उदम लब्धिंग माया नानक साध संग खल पंडिता कंठ रमणी राम राम माला हस्त ऊच प्रेम तारणी जी पण जो उत्तम श्लोक उधर नंग नयन नंदनी गुर मंत्र हीनस जो प्राणी तिरगंत जन्म प्रष्ट न कुकर सुकर गर्त बै काक सर्प न तुल खल चरणार बिंद भजनंग हृदयंग नाम धारण कीर्तनंग साध संगेण नानक न दृष्टंत जम दूतन नच दुर्लभंग तनंग रूपंग नच दुर्लभंग स्वर्ग राजन नच दुर्लभंग भोजनंग बिंजनंग नच दुर्लभंग स्वच्छयंबर नच दुर्लभंग सुत मित्र प्रात बांधव नच दुर्लभंग बनता बिलास नच दुर्लभंग विद्या प्रवीण नच दुर्लभंग चतुर चंचल दुर्लभंग एक भगवान नाम नानक लब्धियंग साध संग कृपा प्रभंग जात कत तत दृष्टंग स्वर्ग मृत पयार लोक सर्वतर रमणंग गोविंद नानक लेप छेप ना लिपेते बिखिया पयंत अमृतंग दृष्टा सका सुवजना दुखियंग पयंत सुखियंग पै पीतंग तन रिपया थान बिहोन विश्राम नामंग नानक कृपाल हर हर गुर सर्वशील ममंग शीलंग सर्व पावन मम पावन सर्व कर्तव ममंग कर्ता नानक लेप छेप ना लिपेते न शीतलंग चंद्र देवा न शीतलंग भावन चंदन न शीतलंग शीत रुतेण नानक शीतलंग साध सवजन मंत्रंग राम राम नामंग ध्यानंग सर्वत्र पूर्ण ज्ञानंग सम दुख सुखियंग जुगत निर्मल निर्वैरण दयालंग सर्वत्र जिया पंच दुख विवर्जित भोजनंग गोपाल कीर्तनंग अल्प माया जल कमल रहता उपदेशं समित्र शत्र भगवंत भगत पावने पर निंदा न श्रोत श्रवण आप त्याग सगल रेणुका खाट रखियण पूर्णंग पुरखा नानक नाम साध सवजना अजाप गंत कंद मूलंग बसंते समीप केहरा तत्र गते संसारा नानक सोग हर खंग व्यापते शलंग छिद्रंग कोट बिघनंग अपराधंग किल बिकमलंग परम मोहंग मान अपमानंग मदंग माया व्यापतंग मृत जन्म परमंत नरका अनक्योपावंग न सिद्ध्यते निर्मलंग साध संगा जपंत नानंग गोपाल नामंग रमंत गुण गोबिंद नित प्रता तरण शरण स्वामी रमण शील परमेश्वर करण कारण समर्था दान देत प्रपूर्ण निरास आस करण सगल अर्थ आलिया गुण निधान सिमरंत नानक सगल जाचंत जाचक दुर्गम स्थान सुगमंग महादुख सर्व सुखण दुर्वचन भेद परमंग साकत पिसनंगता सुरजन आस्थितंग सोग हरखंग पैखीणंगता नृपव ब्राह्मण संग उदरणंग ब्रह्म कर्म जे पूर्ण पै अटवियंग महानगर वासंग धर्म लखियण प्रभमया साध संगम राम राम रमणंग शरण नानक हर हर दयाल चरणंग हे अजित सूर संग्रामंग अत बलना बमर्दनः गण गंधर्व देव मानुख्यंग पाश पंखी विमोहनः हर कर्ण हारंग नमस्कारंग शरण नानक जगदीश्वरा
हे कामं नरक विश्रामं बहुजोनि परमावरण चित हरण त्रैलोक गम्यं जाप तपसील बिदारण आलप सुख अवित चंचल ऊच नीच समावरण तव पै विमुंचित साध संगम ओट नानक नारायण। हे काल मूल क्रोधं कदंच करुणा ना उपर्जते बिख्यंत जीवं वश्यं करोत नृत्यं करोत यथा मरकट। अनेक शासन ताड़ंत जम दूता तब संगे अधमंग नरा दीन दुख पंजन दयाल प्रभ नानक सर्व जी रखिया करोत। हे लोबा लंपट संग सिर मोरा अनक लहरी कलोलते तावंत जिया बहु प्रकारं अनक पांत बहु डोलते। नच मित्रं नच इष्टं नच बांधव नच मात पिता तव लज्जया अकर्णं क्रोत अखाद खाद्यं असाजं साज समझया। त्राह त्राह शरण स्वामी विज्ञापत नानक हर नरहरा। हे जन्म मरण मूलं अहंकारं पापात्मा मित्रं तजंत शत्रं दृढ़ंत अनक माया विस्तीर्ण। आवंत जावंत थकंत जिया दुख सुख बहुभोगणा ब्रह्मयान उदयान रमणं महाविकट असाध रोगणा। वैद्यं पारब्रह्म परमेश्वर आराध नानक हर हर हरे। हे प्राण नाथ गोविंदा कृपा निधान जगदगुरु हे संसार ताप हरणा करुणा मैं सब दुख हरु। हे शरण जोग दयाला दीना नाथ मया करो शरीर स्वस्थ खीण समय सिमरंत नानक राम दामोदर माधवा। चरण कमल शरणं रमणं गोपाल कीर्तना साध संगेण तरणं नानक महासागर पैदुतरा सिर मस्तक रखिया पार ब्रह्मं हस्त काया रखिया परमेश्वरा। आत्म रखिया गोपाल स्वामी तन चरण रखिया जगदीश्वरा सर्व रखिया गुरदयाला पै दुख बिनासना। भगत वशल अनाथ नाथे शरण नानक पुरख अच्युता जिन कला तार्यो आकाशं बैसंतरं काष्ट बेष्टं जिन कला सूर्ण क्षेत्र ज्योतियं सासं शरीर धारणं जिन कला मात गर्भ प्रतिपालं नाशे दंत जठर रोगण। तेन कलाय स्तंभं सरोवरं नानक नैच जंत तरंग तोरणा। जेन कला मात कर प्रतिपालं नाशे दंत जठर रोगणा। तेन कलाय स्तंभं सरोवरं नानक नैच जंत तरंग तोरणा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी पावन हजूरी अंदर जुड़ बैठे गुरु प्यारे गुरु सवारे अति सत्कारी योग सतसंगी जी नौ वड़ पा गए हैं जिथे आप जिया ने लड़ीवार चल रहे सिर सहज पाठ दे राही पावन बाणी का आनंद माणिया। समा है शब्द चौंकी आसा की वार दे कीर्तन का सेवा निभाउणगे सत्कार योग भाई परमिंदर सिंह जी लुधियाने वाले और तिना दे जथे पासों शब्द चौंकी आसा की वार की पावन बाणी के शब्द कीर्तन सरवण करिए जी। भुलना चुका दिखिवा आप संगतां दा धन्नवाद। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की।

पौड़ी सतगुरु विटों वारे जित मिले कसम संभालिया जिनक रूप देश ज्ञान अंजन दिया निरित जगत निहालिया कसम छोड़ दूजे लगे डुबे सेवन जारिया सतगुरु।

एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए। फिर अंगद गुरते अमरदास रामदासे हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरों श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याइये जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै करनौ निदा वैताए। सब थाई हुए सहाय दसवा पातशाह। श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी सब थाई हुए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी। पंजा प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया। देख चलाई तेग वाही देख के अंडिठ कीता तिन्हां प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान धर के बोलो जी। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े। आर्यां नाल चराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां। धर्म नहीं हारिया सिखी केसां सुआसां नाल निभाई तिन्हां दी कमाई दा ध्यान धर के बोलो जी। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जी। प्रथमै सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चेते आवे। चेते आवन का सदका सर्ब सुख होवै। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रछिया रियायत। देग तेग फतेह बिरध की पैज पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहाय। खालसा जी के बोल बाले बोलो जी। सिखा नु सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिरदान नाम दान। श्री अमृत सर जी दे इशनान चौकियां झंडे बुंगे जुगो जोगे अटल। धर्म का जयकार खालसा जी बोलो जी। सिखा दा मन नीवा मत उची माता रखा आप वाहिगुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जियो। श्री ननकाणा साहिब अते होर गुरद्वारियां गुरधामां दे जिन्हां तो पंथ नूं विछोड़िया गया है। खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो। हे निमाणियां दे माण नितानियां दे ताण नियोटियां दी ओट। सच्चे पिता वाहिगुरु आप जी दे पावन पवित्र चरण कमलां पास। अरदास बेनती चौधड़ी प्रार्थना है पातशाह जीओ। आप जी दे हजूर अमृत वेले नूं मुख रखदियां दीवान सजाए गए सजे हुए दीवाना अंदर। लड़ीवार चल रहे श्री सहज पाठ तो उपरंत शब्द चौंकी आसा की वार दे कीर्तन आनंद साहिब छे पौड़ियां दी अरदास। समुची सेवा निभाउंदिया होइया बेअंत भुला चुकां दी खिमा अगां तो समत बख्शिश करनी। समूह संगत दी अरदास बेनती प्रवान करनी कदम कदम लेखे विचलाउणा। आप जी दियां बख्शियां दातां दे विच्चों तिल फुल पेटावां दर ते प्रवान करनियां। दरों करों गुरसिखी जीवन नाम दी दात दे के नवाजना। मनोकामनावां शुभ भावनावां गुरमत अनुसार पूरियां करनियां। काम क्रोध लोभ मोह हंकार तों बचा के सत संतोख दया धर्म धीरज दियां दातां बाणी बाणे नाल गुरु दर दे नाल प्रेम प्यार बख्शिश करना पातशाह जीओ। इन्हां समयां नूं मुख रखदिआं आप जी दे हजूर कड़ा प्रसाद दी देग हाजर है दर प्रवान होवे। प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरतौण दी आग्या बख्शिश करनी कृपा करो। पावन हुकम दी दात बख्श के निहाल करो। अखर वाधा घाटा भुल चुक माफ करनी। सरबादे कारज रास करने सही प्यारे मेल जिन्हां मिलिआ तेरा नाम चेते आवे। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरा गया भई अकाल की तबै चलाए।
ਸਭ ਸਿਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ।

तिस मोहन लाल प्यारे हो फिरों खोजंतिया। तिस दस प्यारे सिर धरी उतारे एक पोरी।

जना बात को बहुत अंदेशरो ते मिटे सब गया सुख सहज अर सुख मन नारी ऊंद कमल बिगसया।